0: सूचनामूलक कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकार
1: एसजीसीएस नमूना सामुदायिक अस्पतालको प्रस्तुति रेडियो मर्सेन्डी, रेडियो चौतारी र रेडियो भोटे उडारबाट एकैसाथ प्रसारण
0: प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे।